ཁྱི ताग चुगिन डंडर लाला तो तंग इंगे गुनी विले अंगमा लंग तंग अंगमा अन्य लंग इंड अजा लंग तंग नाता तो वक सोतु ताशी के ता युकाज गिर ताशी के चा मर्गु के दादे जी चाजी लेजी चिगरे में तगे सुंग तंदे न्यान ने तगे तंग नाता तातो लोग तब जी तें तंग नाता गा रिवाच चुगिन तगे नाता उधर ने शाजु सी के शागे शागे रा उधर के श्योरा पंजु जी ना चुग ता तेरों नंग का यिग्नुचे को का नमो चोंग चोंग ना तो मुझे रचिक लेते भी ना तो हाचंग का चिंबोर करना तब देगा त्यान जी के तेरंग नंका के चिंकुर मंगाज के तो ना उधर जुगसा तेरा मेका तेरे तो नो तब के ता तो मुझे तान थे बिदर तो कोई ना यह नो तो कोई ना चंचं आ तो मुझे कना जुगियो तो तक का चिंबोर तीन ना जगह देते तेरा चुंगा की जरना चुक चुंग चुंगना चम आखिर बताऊँ जब तक ना उन्होंने रे कर चुका कार्टून खोल दर मात्र तावड़ गन समझे ना इग्नोस्टिक ना आज हम आलग ही जोगने तो चल रे ना कौन चल रे ना इग्नोस्टिक का कोर गर्म तंचो गेट ता आतर तामो इन रे तंचो ना तेर गोगे ता तेरे तेरो ताऊ का इचुगे रे दमो मांस लेश का दमो मांस लेतंग ना देरा जी नोबाज का लोग जो रे तमचिपो का लोंगचो का लोग जो के सुगा इचु इके का तमचिपा थमा के रे बचो इगो के रे तने न्यांचन कांसन के रे मंत तंद के सुगा आठ गुणे जीजू सामलोरे तंजो तारों सावरे लीजू तक सुगा अंगारे वायु चिनों तो तंखे को लोटो जगोगे से कुनों ते ये शक्यो आ के तंचे पास हमारे ने इंद्रा शिवरा न्यंचन कहाँ रे वाज तो नों ते एंजिनो आते गिरगन यो तंग लोटो जग तंग नो हंचे नेता चस के गोगे से नाता लोमा चंगो ता ता हाचंग का चिंबुरी क्यों तंचे पास आया इना क्यों जिगना न्यज गयो क्यों शर पास गयो ता ता हाचंग का चिंबुरी ཁྱི Data Sherpa Tres Charing Gari Tigunu Gatari. Ah, Monsumzi. Ah, Tayo. De Torno Yunk, ah, Ranito no Arsum Gatinja Rigunzi. Then Dona Tamsipa, Dergan de Gunna, Ota, on the Nil Savidalita, Shainting Nisan in Dang Ging Girgin Nines, Tamuzora Shakuna and Kota. Tamsipa Tsamata, Moma, Ron Hansum Squa in the Mitsikajanja Hansum Squa Tangizuk. तेनो ताप के ताजे से येरों से आए वाले, चंमा के तमु तमु के तांचे पास चंमा ता होजों से आए वाले, तेनो ताप के ता तांखुई तांचे तांचे पास चंमा के तांखुई को लोमा आ चंगु के तेनो आ तेन, दरगे सुने एक चो रणी तोमे वार्षम इनान जागे, जैक्यू शुवे इनान जागे, आ का गंतर जोंसम इनान जागे, चंमा रिवारा चेनरे, तारी जो इंजो नारा एक चो तांचे जंदर दरगे थोगा, आ सुलो कल हंगा जों Santuk Kumaga Gapulu Jatsika Jamsichan's Yungi Dali Aku Tanquin Chinyangun Yuguzi. They Yungi Dali touches Natamsipa Tamsipo two. The nature na Yanchen Kong Gotta Tekuku and Jukumar Tekuku, Juk Sajungumar Nala Sopara two, Quartin C. The name to Sejupa Toma in Genera, Sendamba Toma in Genera, Quartin C. Ah, Tawaka Katakin. The Muikunu Tugatuniti Nara, Monsukan de Rivachino. Арони тома варсман дэ ревжиг чену атэ хитэ гэз тэндэн ната чэз гэрэз ната тома махкэм рэ цацо хуча цонэ рэ та ревжиг санэ лон дэр сонэ тэно тав кэ тахтан чэ бацэн магэл хома кэм гютэ та хачэн кэ чэм бурэ зэну атэ кэн чэ кэ та тан хуй тан чэ бацэн магэ тан хуй гэ жөзэ тэ гя кэ гютэ хачэн кэ чэ бурэ тан хуй гэ жөзэ гя кэ гютэ тхуни А та та тари го тамсин дэндэр кэ ngawa дэг тхуни тгэз гэ чи лгжи инэ чи лгжи дэ тэнэ жуг яр мэр кэн сунэра а гасэра токок тэн дана та тамхын дэ дэндэр дэ зоджу